0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: Stay connected with Home 92.2 FM. Home is a feeling.